0: Baker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
8: Leica Radio.
0: Easing you through the night with London's biggest hits.

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्सियों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भखाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत ना पाया नदियां ते वहां।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खा

0: सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
1: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
0: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
0: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: बवाल इस बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
3: पवन जी, मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
5: भाई, निकाल माइक।
6: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर।
7: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Wake up. Feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
9: Leica Radio.
8: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मिस्टर पानीपुरी और पानीपुरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
3: New feels good. Feels good.
4: Fly on Air India's new fleet to India and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.
5: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
2: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
6: Al Noor, purana ba'itmat naam, nayi range ke saath, premium pulses, pure, fresh, full of natural goodness, everyday dal se lekar wholesome meals tak, aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor, taste the difference.
7: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
7: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: और ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।

0: कंटेनर्स सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: हाय दिस अक्षय कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू लाइका रेडियो
2: Kush's 90s hit throwback plays now.

करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। इट्स अंताक्षरी टाइम विद

0: Hamster no pani puri ane pani puri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
4: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
2: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
1: So where do we find something like that now?
2: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
3: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स
4: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
6: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होल सम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
7: अटेंशन द आईटेक डेसी इंडिपेंडेंस फूड फेस्टिवल एंड ट्रेड वीक इज ऑन फ्रॉम द 3rd टू द 9th ऑफ अगस्त एट आईटेक कैश एंड कैरी साउथहॉल विद अनबीटेबल होलसेल डील्स ऑन राइस डेयरी फ्रोजन फूड्स फ्रेश प्रोड्यूस केटरिंग एसेंशियल्स एंड मच मोर डोंट मिस लाइव टेस्टिंग्स ऑन द 5th एंड 6th ऑफ अगस्त प्लस एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑल वीक विजिट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे साउथहॉल UB2 4AX और कॉल 0203-393-5225. iTech Wholesale. Open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
8: Next, Reload with Vish Bhatnagar.
9: Leica Radio, London.
8: Yeh hai Leica Radio.

0: जिंदगी वहाँ सेटो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danu Prime Location
1: High Appreciation
2: in Dubai
3: Attention the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 02039 3 5225. ITEC Wholesale. Open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
4: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Kush and Deep Raja discuss honor-based abuse.
8: Ultimately, it comes down to this, that one human being is not allowed to freely live their lives just because of the expectations that they have to carry of their roles and just the reputation of the family and the community they belong to.
7: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. The sun is out with Leica.

0: Mamster Golgappe at the Golgappian da Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: व्हेन योर हस्बैंड्स गॉट हिज हार्ट सेट ऑन मेकिंग द डुअर अपर ओपन प्लान एंजॉय एवरी थडिंग सेकंड ऑफ इट Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
4: Sad

0: Set Go Food Containers. Total satisfaction.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
5: A Laika Radio Classic plays now.

0: जिंदगी वहां सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
2: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: लेट्स बी रियल आई एम अ कैच आई एम फनी कॉन्फिडेंट हैंडसम बट गेट टू नो मी एंड यू विल सी माय सॉफ्ट साइड I'm always on the move, chasing sunsets, chasing vibes. I just want to find my perfect match.
5: How about these square frames?
4: Oh.
5: With mirror lenses?
4: Yeah.
5: Or perhaps a pink tint?
4: That's it.
6: At Specsavers, you can mix and match frames, tints and lenses to create your unique pair of sunglasses. And get £40 off reactions, mirror and polarizing lenses. Conditions apply. See in store for details.
7: Southall travel, 7 days a week.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: New feels good. New feels good.
5: Fly on Air India's new fleet to India and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.
6: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
7: Bikaner wala parampara bhi.
8: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इलफोर्ड, IG26HA। कॉल 07555506015।
9: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
10: Next, Radio Wally's roller coaster is up next
11: on Leica Radio,
10: London. This week's number one on the Leica Chart Show. Tune in every Friday with Annika at 6 p.m. on Leica Radio, Greater London.

0: Mamster no pani puri ane pani puri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor, taste the difference.
4: Hi, this is Saleem.
5: Hi, this is Saleem.
4: Hi, this is Suleiman.
5: Hi, this is Suleiman.
4: From Saleem Suleiman. Keep listening to
6: Laika Radio. Laika Radio.
7: Pay close attention and name the film.

0: time for Radio Wally to take you out of this world with a Lazy Lounge special.
1: Like a radio. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं? तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्र?
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. A true Radio Wally cracker classic. Name the 90s number. This